किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।

हवा अड्डा पिंकी हुजे या बियो को बासर सभिनी खे पकड़ियो वेंदो। सुबह घर वज़ीर में 48 धारियल परदेह वेठल चइनि फताखोरनि जा रेड वार्ड।

0: अपना घर प्यारी और मटिया
1: अल हबीब का भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का।
2: अब आप केटीएम
3: कैंप के मुख्य दरवाजे ते धमाके बाद पर कार्रवाई कंदे संदन का बनाए छड़िया। कार्रवाई दौरान टे दहशतगर्द मारजी वया। एक जख्मी हालत में गिरफ्त शहरी तौर थी दहशतगर्दन सा शहीद है। चार क्लियरेंस ऑपरेशन दहशतगर्दी खिलाफ हमले के जिम्मेवार खिलाफ जवाब

असीं शल आसिम मुनीर इज़हार कंदे पंहिंजे पैगाम में चयो आहे त हीउ क़ुर्बानीूं मुल्क जी दिफ़ा वारे अज़म खे कनि। मज़हमत दहशतगर्दी ख़िलाफ़ कामयाब दहशतगर्दी पंहिंजनि नापाक इरादनि में कामयाब न थींदा। पाकिस्तान रेंजर्स जे सिपाक इरादनि खे नाकाम बणाए पंहिंजे पेशेवर बहादुरी ऐं फर्ज़ वज़ीर आज़म शाह बचीअ में फितना हिंदुस्तान जी दहशतगर्दनि जी बुज़दिलाणे हमले खे नाकाम बणाइण ते सिक्योरिटी फोर्सिस रेंजर्स टिनि दहशतगर्दनि खे नाकाम बणायो।

0: याद रखियो वेंदो शहीदन जो रत राय
1: तरीके हो
2: फिग।

0: AM. This time check skin beauty cream jo show a professional Pakistan.
1: आप सुन रहे हैं DAFM 88 network.

0: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by.
1: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे. अस्करी बैंक.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो. डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते.
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज.
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़.

ਸਾਫ ਕਾਫਰ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਯਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਗਿਆ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
4: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
5: Shaheed HR Zasu ki pyar. Ilaqe mein search and clearance operation jari hai. Azam istehkam operation tahat dahshatgardi khilaf karwaiyon bharpoor andaaz mein jari rahndiyo. Hamle je zimmewaran khilaf jawabi karwaiyon kare shahidan je khoon jo hisab vathandasi. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शहीदन के वारसन से ताज़ियत जो इज़हार करते पैगाम में चयो है त ही कुर्बानियों

पाकिस्तान पंहिंजी सरज़मीन तां हर क़ीमत ते दहशतगर्दीअ खे ख़तम कंदो। असांजो पाड़ेसरी शिकस्त बाद प्रॉक्सीज़ जो सहारो वठी दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ पुरज़मे पाक बैरिया जे आज़म चयो। इस्लामाबाद मफ़ाहमत ते सयूं थियूं, खिते में अमन जी क़याम लाइ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जूं कोशिशूं हुयूं। ईरानी सदर मसूद पेशकियान पारां पाकिस्तान जो दौरो इस्लामाबाद जे अहम किरदार जो एतिराफ़ हो।

सभ खां वधीक सहाफ़ी सिंध में आज़ाद आहिनि। इन आज़ादी जो शिकार बि सिंध हुकूमती बणिजे थी। शर्जील मेमण जो सिंध असेंबली में ख़िताब। शर्जील मेमण चयो त माज़ी में पीपल्स पार्टी ख़िलाफ़ बदतरीन मीडिया ट्रायल्स थिया। सिंध वाहिद सूबो आहे जंहिं जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल ठाहियो। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग लाइ AI खां मदद थी थिए। पीका एक्ट तय करायो। कम करणु सवलो ऐं शहरनि में ॾुखियो हूंदो आहे। सिंध हुकूमत लाइ आसान हो त BRT ठाहे ई न हा, पर आवाम ख़ातिर मनसूबो शुरू कयो। ठेकेदार खे अॻुवाट पैसा ॾियण ते BRT आफ़ीसर ख़िलाफ़ एक्शन वरितो। समूरनि सूबनि पंहिंजे हिसे मां बजेट जो कुझु हिसो फाखे ॾिनो।

0: It's 11:45 AM. This time check is brought to you by.
1: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे. अस्करी बैंक.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद से कुरान के समझी बुधंदा रहो. डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम FM 88 नेटवर्क.
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज.
3: जीए FM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज.
5: जीए हैदी FM 91.6 सिंध जो आवाज.
6: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
5: बुधंदा रहो.

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 12 PM. This time check is brought to you by
3: Al Habib. भरोसा भी रफ्तार भरोसे का।
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN
5: अफगान शहरी तुर्की है। दहशत गर्दन से मुकाबले दौरान टे जवान भी शहादत मानी है, चार जख्मी थी पिया। इलाके में सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। अजम इस्तेहकाम ऑपरेशन तहत दहशत गर्दी खिलाफ कार्रवाई भरपूर अंदाज में जारी रहंदी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शहीद के वारसन से ताजियत जो इजहार कंदे पैगाम में चया है तो ही कुर्बानी मुल्क के दिफा और अजम के मजबूत कर दी हुई।

सिंध असेंबली में दहशतगर्दनि जे हमले में शहीद थियल रेंजर्स जवाननि लाइ फातिह ख्वानी सीनियर वज़ीर शर्जील मेमण चयो त दहशतगर्दीअ जे वाक़े में पंज दहशतगर्द पंहिंजे अंजाम ते पहुता। मोहम्मद अवैस चयो त असां यूनिवर्सिटी रोड ते दहशतगर्दीअ जे वाक़े जी मज़म्मत कयूं था। सादिया जावेद जो चवणो त रेंजर्स जे शहीद पाकिस्तान जी हिफ़ाज़त ख़ातिर पंहिंजूं जानियूं क़ुर्बान कयूं। मुसरत जबीन चयो त बलोचिस्तान जे इलाइक़े दहशत में हिकु ख़ानदान दहशतगर्दी जो निशानो बणियो, संदनि मक़फ़त लाइ दुआ घुरी वञे। अमरीका ईरान मफ़ामत बावजूद विच ओभर में छिकताण तेज़। अमरीका पारां ॿिए ॾींहं ते बि ईरान ते हमला। ईरानी सरकारी मीडिया जो चवणु आहे त हर्मज़गान सूबे में हिकु शहर ते चार मिज़ाइल फैर कया विया। सेरक शहर कशम ॿेट ते हमलनि जा आवाज़ ॿुधा विया। अमरीकी सेंटकॉम जो चवणु आहे त ईरान जे ड्रोन हंधनि समेत दिफ़ाई हंधनि खे निशानो बणायो वियो। कार्रवाइयूं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जी हिदायतुनि ते कयूं वियूं आहिनि।

अमरीकी हमलनि खां पोइ ईरान बि जवाबी कार्रवाई खिते में अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो वियो। ईरान पासदारान इनकलाब जो चवणु आहे त बहरीन ऐं कुवैत में अमरीकी हंधनि खे निशानो बणायो वियो आहे। हमिलो इस्लामाबाद मफ़ामती याददाश्त नामे जी शिक हिक जी भञकड़ी आहे। नतीजे में समूरो सफारती अमल रोकियो वेंदो। कुवैती फ़ौज जो चवणु आहे त केतिरनि ई ड्रोन ऐं मिज़ाइल्स खे तबाह कयो वियो। बहरीन पारां पंहिंजी सरज़मीन ते ड्रोन हमले जी मज़म्मत। अमरीकी सदर पारां ईरान जो वजूद ख़तम करण जी धमकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चवणु आहे त जंगबंदी मुआदे जी भञकड़ी ते अमरीकी फ़ौज ईरान खे निशानो बणायो। ईरानी मिज़ाइल, ड्रोन स्टोरेज ऐं रेडार साइट्स ते हमला कया विया। अहिड़ो वक़्तु अची सघे थो जो असीं वधीक सब्र न करे सघूं, पोइ असांखे कमु पूरो करण लाइ फ़ौजी तरीक़ो अख़्तियार करणो पवंदो। जेकॾहिं ईअं थियो त इस्लामी जमहूरिया ईरान जो वजूद ख़तम थी वेंदो।

खैरपुर में बमराह धार जा बिरादरी के बिन धुरन के जेड़े में मारजी वेल एक जने जो लाश रखी धरणो घोट सहीद इलाको में धुरन में जेड़े दौरान फायरिंग में गुलाम मोहम्मद बमरो मारजी वयो।

0: मेहर में उजाला परवीन ऐं प्रिया कुमारी जी बाज़ाबी हो त न्याणियुनि जे अॻियां आहिनि। पुलिस जे जोड़ियल GIT बूटो ॿारे न सघी। सिंध जो शहूर सरापा एहतजाज आहे, न्याणियूं बाज़ियाब करायूं वञनि। समारोह में नए कोर्ट मां अगवा थियल वापारी हरेश कुमार जी बाज़ियाबी लाइ एहतजाज। महेश्वरी बिरादरी ऐं चेंबर ऑफ कॉमर्स पारां शाही बाज़ार खां प्रेस क्लब ताईं रैली कढी वई। अगवाणनि जो चवण हो त नए कोर्ट मां अगवा थियल वापारी हरेश कुमार महेश्वरी जो हिकु हफ़्तो गुज़र वोट कादिर बख्श सांद वासी जान आलम सांद मदरसे जे वाशरूम मां लाश मिलियो। मदरसे जे मतवालीअ जो चवण आहे त ॻोठाणो सुबुह जो वाशरूम वियो, हिकु कलाक ताईं वापसि न अचण ते दरवाज़ो टोड़ियो त संदसि लाश मिलियो आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
4: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज।
3: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: सिंध जो आवाज़।
1: आ था वो खमिले, मैं नींद नींद को तरसा मगर नहीं सोया। आफे मौसम दिल है कि थम गई बारिश, खिलाफ हुरमत गम है कि मैं नहीं रोया।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

सिंध बजट में मुल्तान में आईटी पार्क कड़े कानून मूजिब पैसा रखा वह आन पंजाब हुकूमत लीडर सिंध असेंबली में जज्बाती थी वो एक कड़ो खर्च पो थे कश्मीर में खर्च किया हा, हैदराबाद मीरपुर खास या वरी कराची में ही खर्च किया हा। हुकूमत चवंदी है पोजीशन सुठन कदम की वाखाण नथी करे सा सरदार शाह के खयल तारीखी कदम की ब भेरा वाखाण कई है। अमेरिका ईरान मफामत बावजूद विचोबर में चिकतान तेज अमेरिका पारा बे डी ते भी ईरान ते हमला ईरानी सरकारी मीडिया जो चवण है हरमजान सूबे में एक शहर चार मिजाइल फायर किया वह सेरक शहर कशम बेट के हमलन जो आवाज बुधा वह अमरीकी सेंटकॉम जो चवण है ईरान के ड्रोन हंधन समेत दिफाई हंधन के निशानो बणाय वो कार्रवाई अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हिदायतन से कई व्यू अमरीकी हमलन का पोए ईरान भी जवाबी कार्रवाई कंदे खिते में अमरीकी अड्डन के निशानो बणायो ईरान पासदारन इनकलाब जो चवण है बहरीन ए कोवैत में अमरीकी हंधन के निशानो बणायो वो है हमलो इस्लामाबाद मफामती याददाश्त नामे की शिक एक की भंजकड़ी है कोवैती फौज जो चवण है केतरन ही ड्रोन ए मिजाइल्स के तबाह किया वो बहरीन पारा भी पैं सरजमीन से ड्रोन हमले की मसम्मत अमरीकी सदर पारा ईरान जो वजूद खत्म करने की धमकी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चवण है जंगबंदी मुआदे की भंजकड़ी से अमरीकी फौज ईरान के निशानो बणायो ईरानी मिजाइल ड्रोन स्टोरेज ए रेडार साइट्स से हमला किया वह अड़ो वक्त अची सके तो जो असि सब्र न कर सकूं असा के कम पूरा करने ला फौजी तरीको अख्तियार करणो पवो जडे इ इस्लामी जमहूरिया ईरान जो वजूद खत्म थी वो खैरपुर में बंबरा ए धारेजा बिरादरी के बिन धुरन के झेड़े में मारज वल एक जन जो लाश रखी धरणो गोट सईद लाखों में धुरन में झेड़े दौरान फायरिंग में गुलाम मोहम्मद बंबरो मारज वो वारसन पारा लाश रखी धरणो मेहड़ में उजाला परवीन ए प्रिया कुमारी की बाजियाबी लाए सियासी समाजी धुरन जो एहतजाज अगवाणन जो चवण हो तो सिंध की मजलूम न्याणियों उजाला परवीन ए प्रिया कुमारी के पुलिस अजा ते बाजियाब ना करा न्याणियों के अगवा जहा वाक वधी रहा है पुलिस की जोड़ियल जे आई टी बूटो सिंध जो शहूर सरापा एहतजाज है नोटिस वी न्याणियों बाजियाब कराई वजन

समारोह में नए कोट में अगवा तलवापारी हरेश कुमार जी बाजा बिला एहतजाज महेश्वरी बिरादरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स पारा शाही बाजार का प्रेस क्लब तई रैली कढ़ी वही। नए कोट में अगवा तलवापारी हरेश कुमार महेश्वरी जो एक हफ्तों गुजरण बावजूद पतो न पाया।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुंगर था भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे।
2: ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सदा रहो।

प्रोग्राम में फन होता है, प्रोग्राम में बातें होती हैं, प्रोग्राम में चैट होती है, प्रोग्राम में ब्यूटी टिप्स होती हैं और इसके अलावा प्रोग्राम में म्यूजिक कलेक्शन होता है। ओके जी, आप भी हमें फॉलो करते हैं, आप भी हमें जो है ना वो ज्वाइन करते हैं, वो क्या तरीकेकार होंगे वो सब कुछ बताएंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए, यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रही थी कि बहुत सारी आंटियां, अम्मियां, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान, सो भी अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुन ही लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए। आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला, बिकॉज आली रे आली, सदर आली बॉस, आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं, आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। आगे से प्रोग्राम किया जाएगा जनाब एक बहुत प्यारे से कलाम के साथ। तो प्रोग्राम में बहुत प्यारा सा कलाम सुनते हैं, उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है। तो आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स। एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते जा रहे हैं, खूबसूरत होते जा रहे हैं।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: की गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते। अभी

अवेलेबल कराइए 0315। ओके जी, दर्दे दिल हमारे साथ मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम कहती हैं चंदा, कैसी हैं आपकी चंदा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसी हैं। किशोर भाई लिखते हैं कि टॉपिक कभी वक्त बदलने का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलता नहीं है, उसे बदलना पड़ता है। अगर आप अच्छे वक्त के इंतजार में बैठे रहें तो ये जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा होगा। वक्त के पास इतना वक्त नहीं कि वो आपको दोबारा वक्त दे सके। क्या बात है। कितनी अच्छी बातें करते हैं ना आप। अच्छा, मोतिया सेठानी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। मोहम्मद ताहिर भाई मेहरापुर FM से हमें सुन रहे हैं। ओके जी, वेलकम करते हैं। अली अकबर बिरोही भाई हमें सुन रहे हैं सकरेन से, आपने हमें ज्वाइन किया, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया। पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। बजाज कहते हैं असांखे फेस वॉश की जरूरत आ, यो फेस वॉश सऊदी में कड़ी जगह ते मिलंदो? हाँ या तो खैर मुख्य भी खबर कोने का, जो नंबर तक बुधाएं थी ना, इन नंबर से तुम राबो करी वेठो, उन्होंने का पुछो तो सऊदी में अवेलेबल आन या फिर कोन। अगर अवेलेबल ना तो पाकिस्तान अचो तो वो वठी वजो।

0: हाँ जी इस लगे थे देर नहीं कहनी चाहिए जहाँ प्रोग्राम सुन रहे व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से आपका हमारे साथ पूरी पूरी तीन बजे तक सुनती रहिए साथ दीजिए टाइम हो जाता है जरा न्यूज ब्रेक और शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास मौजूद रहिएगा और साथ दीजिएगा
1: अब आप सुनेंगे नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: FM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज

अमरीका ईरान मफाहमत बावजूद विचोबर में छिकताण तेज। अमरीका पारां बे ॾींहं ते बि ईरान ते हमला। ईरानी सरकारी मीडिया जो चवण आहे त हुर्मुज़खान सूबे में हिकु शहर ते चार मेज़ाइल फायर कया विया। सेरिक शहर कशम बेट ते हमलनि जा आवाज़ ॿुधा विया। अमरीकी सेंटकॉम जो चवण आहे त ईरान जे ड्रोन हंधनि समेत दिफ़ाई हंधनि खे बि निशानो बणायो वियो। कार्रवाइयूं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जे हिदायतुनि ते कयूं वियूं आहिनि।

अमरीकी हमलनि खां पोइ ईरान जी जवाबी कार्रवाई खिते में अमरीकी हंधनि खे निशानो बणायो वियो। ईरान ऐं पासदारान इनकलाब जो चवणु आहे त बहरीन ऐं कुवैत में अमरीकी हंधनि खे निशानो बणायो वियो आहे। ईरानी परडे॒ही वज़ारत जो चवणु आहे त वाइदा टोड़णु अमरीकी हुकूमत जी फितरत आहे। अमरीका पंहिंजी वादनि जी परवाह न कंदो आहे। हमला इस्लामाबाद मफ़ामती यादाश नामे जी भञकड़ी आहिनि। ईरान क़ौमी ख़ुदमुख़्तियारी इलाक़ाई सलामती ऐं दिफ़ा लाइ पुरज़म आहे। कुवैती फ़ौज जो चवणु आहे त केतिरनि ई ड्रोन्स ऐं मिज़ाइल्स खे तबाह कयो वियो। बहरीन पारां पंहिंजी सरज़मीन ते ड्रोन हमलनि जी मज़म्मत। अमरीकी सदर पारां ईरान जो वजूद ख़त्म करण जी धमकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चवणु आहे त जंगबंदी मुआदे जी भञकड़ी ते अमरीकी फ़ौज ईरान खे निशानो बणायो। ईरानी मिज़ाइल ड्रोन स्टोरेज ऐं रेडार साइट्स ते हमला कया विया। अहिड़ो वक़्तु अची सघे थो जो असीं वधीक सब्र न करे सघूं। पोइ असांखे कम पूरो करण लाइ फ़ौजी तरीक़ो अख़्तियार करणो पवंदो। जेकॾहिं ईअं थियो त इस्लामी जमहूरिया ईरान जो वजूद ख़त्म थी वेंदो। कराची में पाकिस्तान रेंजर्स सिंध जे कैम्प ते दहशतगर्दनि जो हमिलो नाकाम। टे दहशतगर्द मारिजी विया, हिकु ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार। ISPR मूजिब 27 जून ते कराची में रेंजर्स जे कैम्प ते भारतीय प्रॉक्सी तंज़ीम जमात अल हुरार जे खारिजनि हमिलो कयो। दहशतगर्दनि कैम्प जे मुख्य दरवाज़े ते धमाके बाद सिक्योरिटी घेरो टोड़ण जी कोशिश कई, पर रेंजर्स जे अहलकारनि बर वक़्त कार्रवाई कंदे नाकाम बणाए छॾिया। ज़ख़्मी दहशतगर्द जी सुञाणप अफ़गान शहरी तौर थी आहे। दहशतगर्दनि सां मुक़ाबले दौरान टे दिलेर जवान बि शहीद ऐं 4 ज़ख़्मी थी पिया। इलाके में सर्च ऐं क्लीयरेंस ऑपरेशन जारी आहे। अज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन तहत दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं भरपूर अंदाज़ में जारी रहंदियूं। फील्ड मार्शल चयो त शहीदनि जे वारसनि सां ताज़ियत जो इज़हार कंदे पंहिंजे पैगाम में चयो आहे त ही क़ुर्बानियूं मुल्क जी दिफ़ा वारे अज़म खे वधीक मज़बूत कनि थियूं। सदर वज़ीर आज़म ऐं घरू वज़ीर पारां कराची में रेंजर्स कैम्प ते भारतीय प्रॉक्सी जमात अल हुरार जे दहशतगर्द हमले जी मज़म्मत। सदर आसिफ ज़रदारी चयो आहे त क़ौम दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग में तुर सिपाहियुनि जी कोई न विसारींदी। परडे॒ही सरपरस्ती हेठि कम कंदड़ दहशतगर्दनि जा नापाक इरादा कॾहिं बि कामयाब। पाकिस्तान रेंजर्स जे सिपाहियुनि हिकु भेरो ॿीहर फितना हिन्दुस्तान जे दहशतगर्दनि जे नापाक इरादनि खे नाकाम बणाए पंहिंजे पेशे वारानी सलाहियत, बहादुरी ऐं फर्ज़ शनासीअ जो मुज़ाहिरो कयो। पाकिस्तान रेंजर्स टिन दहशतगर्दनि खे मारे हिक खे ज़िंदा गिरफ़्तार करे फितना हिन्दुस्तान जे जारहाणे इरादनि खे नाकाम बणायो। मोहसन नकवी चयो त हमिलो नाकाम बणाए शहादत माणींदड़ जवान क़ौम जा हीरो आहिनि। सिंध असेंबली में दहशतगर्दनि जे हमले में शहीद थियल रेंजर्स जवाननि लाइ फाते फानी। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन चयो त दहशतगर्दीअ जे वाके में 5 दहशतगर्द पंहिंजे अंजाम ते पहुता आहिनि। मोहम्मद अवेस चयो त असां यूनिवर्सिटी रोड ते दहशतगर्दी जे वाके जी मज़म्मत कयूं था। सादिया जावेद जो चवणो हो त रेंजर्स जे शहीदनि पाकिस्तान जी हिफ़ाज़त ख़ातिर पंहिंजूं जानियूं क़ुर्बान कयूं। मुसरत जबीन चयो त बलोचिस्तान जे इलाइक़े दहशत में हिकु ख़ानदान दहशतगर्दी जो निशानो बणियो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ऐं बहरीन जे परडे॒ही वज़ीर विच में फ़ोन ते राब्तो। इस्लामाबाद मफ़ामती यादाश नामे खे नज़र में रखंदे खिते जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं। बहरीनी परडे॒ही वज़ीर जंगबंदी में पाकिस्तान जे किरदार खे साराहियो। डॉक्टर अलज़ियानी चयो त ईरान अमरीका मुआदे सां खिते में जटादार अमन जो क़याम मुमकिन थींदो। बहरीनी वज़ीर अमन लाइ किरदार अदा करण ते फील्ड मार्शल जा थोरा मञिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो त पाकिस्तान अमन लाइ ॻाल्हियुनि खे हथी ॾियण वारी अज़म ते क़ाइमु आहे।

सिंध बजट मां मुल्तान में आईटी पार्क कहिड़े कानून मूजिब पैसा रखिया विया आहिनि। पंजाब हुकूमत सिंध में घणा मनसूबा ॾिना आहिनि। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबलीअ में जज़्बाती थी वियो। अली खुर्शीदी चयो त हीउ कहिड़ो मज़ाक आहे, सिंध जे टैक्स जो पैसो मुल्तान में ख़र्च पियो थिए। इहे पैसा कंदकोट कश्मीर में ख़र्च कयो आहे, हैदराबाद या वरी मीरपुर खास समेत कराची में ई ख़र्च

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो 91.6।
2: हक सच जो आवाज, गीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: चलो चलो चलो नका ना बजा सकते सही आयरा मैं चवन वटी तो कजो मुझे इंतजार भाई का बजी दिया है रोज केड़न दोस्तन की याद कंदो दोस्तन की विसारे छड़ो ता दोस्तियों का भी ना है या बेने का गाला बला ओके सो कॉलिंग नंबर है 0332132322 तमाम भी कॉल करी सको था अच्छा तुम्हारा जै भी गोठ में आयो जै भी शहर में आयो जिते भी आयो उते हर जगह ते वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल आहन ता वनी उता वठी सगो था आई वठी सग था त जाहिर सी गाल तमा इस्तेमाल कयो जी ताके खबर पई त ही जके प्रोडक्ट मा बुधाया पई केतरा जबरदस्त आहन न सिर्फ तमा जे खूबसूरती के वधाईंदा बल्कि तमा जे खूबसूरती जे हिफाजत भी कंदा आहन सो बिल्कुल तमा इस्तेमाल कयो पया वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स या वरी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स तमा असा के बुधाईंदा कयो आई असा के बुधायो जे सा खबर पई त असा जके सोणा लिसनर्स आहन ओ केडो प्रोडक्ट इस्तेमाल कन पया कॉलिंग नंबर है 0332132322 नेक्स्ट कॉल की तरफ अचूं था दिसूं था तो नेक्स्ट कॉलर केर से सगन मौजूद है हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: अस्सलाम वालेकुम
0: जी वालेकुम अस्सलाम केर मौजूद है
1: यासमीन बात कर रही है मिर्पुर खास
0: से यासमीन बात कर रही है मिर्पुर खास से कैसी है यासमीन ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ मजे में मुझे बताएं प्रोग्राम
1: से
0: हाँ वही
1: लगती
0: वही मैं सोच रही थी पहली मरतब आपकी कॉल लगी आपको खुश आमदीद कहा जाता है प्रोग्राम सुनती हैं आप वैसे मेरा
1: जी हाँ बिल्कुल
0: अच्छा
1: लेकिन मेरी कॉल नहीं लगती
0: है चलिए आप कोशिश किया करें आपकी कॉल ऐसी लग जाएगी जैसे आज लगी है
1: आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है बिल्कुल भी किसी के लिस्नर से कभी भी गुस्सा नहीं करती है बहुत अच्छी है
0: थैंक यू ये आपकी मोहब्बतें भाई ऐसा आप समझती हैं वैसे कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाता है मैं निकाल लेती हूँ लिसनर्स के ऊपर अच्छा अच्छा मुझे ये बताएं यास्मीन के आप टॉपिक के ऊपर क्या कहेंगे
1: टॉपिक क्या है आपका
0: टॉपिक ये है कि जिंदगी में किस चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए किस चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए सोचने लग गई चलिए ठीक है मुझे ये बताएं कि मैं जो प्रोडक्ट बताती हूँ उसके ऊपर आप बताएं जरा इस्तेमाल करती हैं करेंगी क्या इरादा है
1: मेकअप वगैरह मैं इस्तेमाल नहीं करती कभी भी नहीं किया
0: चलें फिर आप साबुन तो लगा सकती हैं लवली क्रीम लगाइएगा जरा मेरे कहने के ऊपर
1: इस्तेमाल नहीं किया
0: चले बहुत शुक्रिया यास्मीन आपने कॉल करी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और क्या कहेंगे
1: आपकी आवाज़ बहुत अच्छी
0: थैंक यू बस इतनी तारीफें करती हैं मैं उड़ना स्टार्ट हो जाती हूँ यास्मीन का बहुत शुक्रिया पहली मरतबा इनकी कॉल लगी हमारे प्रोग्राम में हाय क्या बात है जी और नेक्स्ट कॉल की जाने बात है कॉलिंग नंबर है 0332132228 सो नेक्स्ट कॉलर हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो वालेकुम अस्सलाम क्या मौजूद है
2: हालार विशाल
0: कॉल किया कितना का कॉल किया
2: अलाहाबाद लाड़कानो
0: अलाहाबाद लाड़कानो मुख्य बताया प्रोग्राम बुधो प्या क्या बुधो तो कॉल छू कया उन्होंने की कॉल करण जो मौके हो जो बेचारा प्रोग्राम बदन पया
2: बस कॉल लगी
0: चलो
2: ओके
0: मुख्य यो बुधायो तो टॉपिक भी ना बुधो तो जाहिर सी गाल बारे में सोचो आए ना चलो वो जरूर कड़े दोस्तों के याद कदा चलो थैंक यू सो मच तुम कॉल कई प्रोग्राम में आई कॉलिंग नंबर है 0332132322 तुम बुधा कि आयो तीन कॉल लगी बुधो प्या असो जी जी मुख्य हाँ या भी गाल मुख्य प्रोडक्ट बुधा पी कोई इस्तेमाल कयो आए केड़ो इस्तेमाल कयो था
2: अच्छा ये तां जो करे ना
0: जी जी
2: ऐसा कौन इस्तेमाल करे अभी ये थर में ना है ऐसा जो वातन जिला मिर्चपुर वाले ना पैसे पर हुआ था का परे है
0: चलो तां इते पांच गोठ में अवेलेबल करा ना जो को प्रोग्राम में नंबर बताए ना ते एक दफा तां कॉल करी दिस जो ठीक है
2: जी कॉल का फोन नंबर जरूर बताया जो को आता उन पे कॉल करी
0: सके ओके तां नोट कजो मां नंबर तां के बताया थी
2: वतन के शामिल कयो
0: जी जी करी बैठो
2: रुस्तम अली पवारा नवल राज दानिश कुमार सूरज गुलशंकर लाल देख के बिदन सभी के।

0: अलावा कॉलिंग जोर से ही तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराए. वो नंबर आहे 01579905915. ही नंबर आ जिन्हें तमाम कॉल करी पाने करीबी जनरल स्टोर से ही तमाम प्रोडक्ट अवेलेबल कराए जो तक वन में आए. सो ही नंबर से तमाम टाइम थी अस हाँ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ वनू था. उनका जल्दी वापसी तवे मोटी अच्छी साको पूरे टे बजे ताई है. सो हिं वही हिं मोटू था. स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स. एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत रहिए.
1: सिंध की आवाज, हक सच गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज. बुधंदा रहो, बुधंदा रहो.
2: इट्स 2:30 PM. This time check is brought to you by
3: Heme Diamond Glow Bleach Cream, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस, चमक ऐसी डायमंड स्किन.
4: खूबसूरती है जो सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो सिर्फ बिन डी हने खत्म. आई डी लो हर डी.

0: देखिए फरार इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाजी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
4: GFM 91.6।

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो आप इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरतियाँ आपके साथ साथ होंगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई जान हमें इस्तेमाल करना चाहिए तो कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके इस्तेमाल से हम अपनी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं, तो आपके पास मौजूद है जनाब व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को नहीं बताया तो वो बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर वो लोग जो कि ये सोच रहे हैं कि भाई डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में क्या ऐसी खास बात है या क्या ऐसी डिफरेंट बात है जो कि हमें इस्तेमाल करना चाहिए, तो मैं बताती चलूं जरा ये डिफरेंस जो है वो जरा आप लोगों को समझाती चलूं। तो जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहें तो ये बात आप पहले से समझ लें कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये कोई नॉर्मल क्रीम नहीं है, यानी कि नॉर्मल क्रीमों जैसी नहीं है। सबसे बात ये है कि इसके अंदर जो है ना वो चीजें ऐड की गई है जो कि आप लोगों की बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि फुल डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया गया है, खास करके उन लोगों के लिए परफेक्ट प्रोडक्ट साबित होगा जो कि भाई अपनी स्किन सेंसिटिव स्किन की वजह से परेशान रहते हैं, तो प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। और रीजन ये होता है कि भाई आपकी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव, डी स्किन ब्यूटी इस्तेमाल करके देखना है। और डी स्किन ब्यूटी मौजूद गया एक बहुत ही जबरदस्त फार्मूला है जो कि इस्तेमाल करते हैं आप, तो सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से आपको क्रीम आप सिर्फ रिजल्ट मिलना है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो की ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, मर्द हजरात हो खवातीन हो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम नाइट क्रीम है तो इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल कीजिएगा। ओके जी, उसके अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है, तो डी स्किन फेस वॉश जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और डी स्किन फेस वॉश की सबसे बेहतरीन बात मैं आप लोगों को बता दी चलूं कि डी स्किन फेस वॉश जो है ये जनाब हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है, जिसका फायदा आपको ये मिलेगा कि आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी, आपकी स्किन क्लीन रहेगी और आप हमेशा ग्लो करते रहेंगे। तो डी स्किन फेस वॉश भी आप इस्तेमाल

साथ में आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये एक जबरदस्ती क्वालिटी वाले प्रोडक्ट है जिनका इस्तेमाल आपको करना चाहिए. इस्तेमाल कीजिएगा और साथ साथ जो है अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते रहिए. उसके लिए आप डायल करेंगे जनाब 03-15-799-0595. इस नंबर के ऊपर रब्ता कीजिए. और मैंने जरा मालूमात ली कि ये जो इतने सारे लिसनर्स मुझे कहते हैं कि बाजी हमारी कॉल रिसीव नहीं होती, बाजी हम रब्ता करते हैं लेकिन कॉल पिक नहीं होती, तो इसका मुझे ये पता चला कि भाई अगर आप कॉल जो है ना कर रहे हैं तो पूरी कॉल करें, यानी कि आप मिस कॉल दे रहे होते हैं, अगले इंसान को तंग कर रहे होते हैं. आप कॉल करें प्रॉपर तरीके से कॉल नहीं कर पाते हैं तो आप मैसेज एक छोड़ दें छोटा सा कि आप फलां जगह से हैं और आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं ये प्रोडक्ट, तभी आपकी जो रिक्वेस्ट है उसके ऊपर अमल किया जाएगा. वरना जो है अगले इंसान को तंग मत किया करें, ठीक है ना. ये भी बहुत बुरी बात होती है. तो प्रॉपर कॉल कीजिए या फिर मैसेज कीजिए एक छोटा सा कि आप अवेलेबल कराना चाहते हैं अपने एरिया के अंदर, और आपके लिए नंबर 9995.

ओके जी, तो टाइम बहुत ही ज्यादा हमारे साथ मौजूद हैं कि ऊपर जितने भी लोग हमारे साथ आप लोगों के कमेंट्स ऊपर भली माजरत कर देते हैं यार से, जो जिंदगी जाए वो मतलब ही होता है। अच्छा कोई नहीं कोई नहीं, अब वजह कहते हैं माँ गाल था कहो। अली अकबर बरोई भाई हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम कहते हैं, प्लीज रीड माय वो जो आगे कीजिएगा कि दोबारा ताकि वो प्रोग्राम में शामिल। और नखा ए एम अंसार नोटिफिकेशन आ गया।

तोबा तोबा सुबू जमान भाई, मोहम्मद जमान भाई क्या कहते हैं साथ, अब क्या करूँ, मुझे समझ से भी कहेंगे कि भाई तो बोला करें परचेज कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम या फिर वाइट एज ब्यूटी क्रीम, आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे तो आगे पैसे जो ना वो वसूल हो जाएंगे, समझ रहे हैं। ओके जी, सो मैसेज आएगा तो मैं बता दूंगी। अच्छा प्रिंस अफजल कम करते हैं, ए मनसा इंतजार किसी भी चीज का इंसान को बहुत ही तकलीफ देता है, कुछ चीजें जो ऊपर से मिलनी हो वो मुकर्रर वक्त पे खुद को आदि बनाना बहुत ही अजियतनाक होता है। और जब गाने की आपने फरमाइश करी वो हम कल सुनेंगे, ठीक है, आज की लिस्ट तकरीबन फुल हो चुकी है। आज वैसे आने में आपने थोड़ी सी देर भी कर दी थी, है ना, मान रहे ना।

क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना सुन रहे हो और साथ साथ प्रोग्राम ही सुना। व्हाइट एज एंड जी स्किन ब्यूटी शो, व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करते जा रहे हैं, खूबसूरत होते जा रहे हैं। गुलाम रहीम बलोच भाई हमारे साथ ही, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, थैंक यू सो मच। किशोर भाई कहते हैं कि मेरे चेहरे की हंसी को वो ले गया नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया। क्या बात है, आप अच्छी शायरी कर सकते हैं। और हाँ सही बात है, अच्छा लुबी हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, कहते जो जाने क्या हाल है, मैं भी आपके साथ साथ हूँ कराची से, आपका अरे साथ मेरे ना मजे ही कर रहे हैं भाई। अच्छा आदिल हुसैन वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं, और काफी दिनों के बाद आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने तो आपको वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। और गाने की फरमाइश करिए, गाना हो सकता है मैं कल आपके लिए लगा दूंगी, आज की लिस्ट फुल हो चुकी है। ओके जी, अलीजा भी हमारा शो सुन रही है, अलीजा आपको भी खुशामदीद कहा जाता है। और निदड़ी भाई, निदड़ी जिंदा है और वो पता नहीं कहाँ है, इतना पता है कि वो जिंदा है। अच्छा हिदायतुल्लाह कहते हैं कि अभी मतलब मैं याद ना करूं तो तुम भी याद नहीं करोगी, दिन वो आकर सबसे पहले आपका शो सुनता हूं, मैं कमेंट ना करूं तो मेरा नाम लिया करे, रात को तो सुन ही लेता हूं मैं, चले मैं कोशिश करूंगी। अच्छा सूफिया नेमत हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूं, आप बताइए आप कैसे हैं सूफिया।

के लिए बहुत प्यारा गाना हमने सुना। एक और गाना है जो हमारी लिस्ट में मौजूद है, जिसकी फरमाइश हमें चाचा ने कर दी थी। चाचा तो आप समझ ही गए होंगे। तो गाना सुनेंगे और साथ साथ ओके जी इस्तेमाल कर रहे नहीं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ये भी आप हमें जरूर बताया करें। और साथ साथ 595 ओके जी चाचा तव्हां पंहिंजो गानो ॿुधो ई तव्हां पैनल ते मैसेजेस कया आहिनि गाने जे लाइ। और मीरपुर खां अब्दुल्ला महर हमारे साथ ही। वालेकुम असलाम बाजी, मैंने भी है, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। मेरे पास अस्सलाम वालेकुम बाजी, सॉन्ग सुनाओ कोई भी आपकी पसंद का। व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम गुड है, ओके वेरी नाइस। और ये हमारे साथ है बाजी, ही गानो तो हलायो, कोई पहरियां सनम न हुंदो हो, मुखे कोई भी गम न हुंदो हो। इमरान भाई हमारे साथ मौजूद है, क्या बात है इमरान भाई, आपका भी वेलकम करते हैं। और ये मौजूद है, वालेकुम असलम, क्या हाल है, यहाँ पे सिद्रा मुस्कान आई हूँ, फादिली लाशारी सॉन्ग ओएसटी है। चलिए मैं कोशिश करूंगी आपका गाना कल सुनेंगे, ठीक है। आपने सबको सलाम दिया।

की असम पूजा से दिलावर हुसैन सोलंगी बारे हार तो किसी का ये क्योंकि आप जानती हैं इंतजार मौत बराबर होता है, लेकिन हम आपके प्रोग्राम का इंतजार जरूर करते हैं। हमें शमन का गाना सुनाइएगा जो चल गया वो आपके नाम था, और कहते थैंक यू डेडिकेट ड्राइवर नजीर सोलंगी, आसिम अली सोलंगी, अलीजान सोलंगी, मुदस्सिर।

0: अच्छा हमारे साथ ये लिखते हैं कि तो अर्ज किया है कोई ऐसा अहले दिल हो जिसे सिर्फ मेरी आरजू हो, अगर खो जाऊं कहीं तो सिर्फ मेरी जस्तजू हो, मैं उसके जहनो दिल में कुछ इस तरह समा जाऊं, वो जबान जब भी खोले सिर्फ मेरी गुफ्तगू करे। गुलाम शबीर तुनिया फ्रॉम कंबल शो तो VIP है भाऊ, बहुत शुक्रिया भाऊ आपका, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया।
1: इस तरह के कोई ना हो दरमिया।
0: अच्छा फहीम शेख कहते हैं कि हमारी कॉल लगी नहीं, आप ट्राई किया करें, आपकी कॉल जरूर लग जाएगी।
1: ऐसे से सपना कोई खिलाए तेरे आने से आए दिल को कर।
0: अच्छा वजाद कहते हैं कि किस्मत इतनी खराब है कोई पैसा भी उधारा न थोड़े इन लाइ चाहे अगर कहीं पैसा वो तो उधारा तो उनके टाइम वापस दींदा कि वो आइंदा भी तुम्हारे ट्रस्ट कर सके। अच्छा गुलाम इधर फुल पोटो में सुन रही मेरे खास आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा चाचा खालिद कहते हैं कि बिछड़े हुए लोगों का इंतजार नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आई एग्री। अच्छा हिदायतुल्लाह बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू, थैंक गाने की फरमाइश किया करें। दर्द दिल बहुत शुक्रिया स्वीटू। बख्तलिम कहते हैं कि मेरी ब्लैक ब्यूटी को चॉकलेटी बॉय रिक्वेस्ट पे लेट बोल दी, थोड़ा सा ना आप रोइएगा मत, आप ऐसे ही बड़े अच्छे लगते हैं, तो रोते अच्छे बच्चे नहीं बल्कि बुरे बच्चे हैं, तो आपकी रिक्वेस्ट भी पूरी करेंगे और आपकी ब्लैक ब्यूटी को जो है ना वो व्हाइट ब्यूटी में तब्दील करेंगे, बस थोड़ा इंतजार किया करें, सब्र किया करें। सुफियान भाई लाड़कना का मौसम बस ठीक ठाक है, मुझसे मौसम के बारे में मत पूछा करे, मैं मौसम के बारे में नहीं जानती। और उसके अलावा जी और जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है सबका बहुत शुक्रिया, आज मुझे लग रहा है कि आप लोगों के कुछ फीडबैक्स रह चुके हैं प्रोग्राम में, तो आप लोगों से माजरत कर देते हैं, पर इंशाल्लाह तमाम से मुलाकात मुझे सुबाने वाले प्रोग्राम में थियण वाली है। हमेशा बिल्कुल जी ये खिलंदा मुस्कुराइंदा रहंदा कयो, वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स जन या डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जन उन जो तुम्हारे इस्तेमाल करना रहंदा कयो। मोहम्मद बीरन जकरानी भा तां जो मोहब्बतवान प्रोग्राम बुधो पयो। अच्छा फहीम आज काफी रश था प्रोग्राम में, आप देख सकते होंगे तो इस वजह से हो चुका होगा, बाकी से कोई बात नहीं है। वो यास्मी ने बोला ना कि आप उसकी कॉल सुन चुके होंगे तो आप जानते होंगे उन्होंने क्या बोला, तो ये बात बिल्कुल सही है, मैं किसी को इग्नोर नहीं करती, सब मेरी नजर में एक जैसे हैं, तो अपना ख्याल रखिएगा। मेरी जाने का वक्त हो चुका है भाई, मैं बहुत कुछ बोलना चाहती थी लेकिन टाइम जो है वो इजाजत नहीं दे रहा, तो वरी सर तव मुलाकात सुबाने वाले प्रोग्राम में थियण वाली है, 1 बजे कंट्रीब्यूटी थी तवजो असो साथ रहो है, सो मोकलानी ना ही सिं सलामत सा सलामत अल्लाह हाफिज बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर।
2: तहजीब सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, GAFM 88 की आवाज़,
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की।
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: अमरीका ईरान मफ़ामत बावजूद विचोबर में छिकताण तेज अमरीका पारां बे ॾींहं ते बि ईरान ते हमला। ईरानी सरकारी मीडिया जो चवण आहे त हरमुज़ खान सूबे में हिकु शहर ते चार मेज़ाइल फैर कया विया। सेरिक शहर कशम बेट ते हमलनि जा आवाज़ ॿुधा विया। अमरीकी सेंटकॉम जो चवण आहे त ईरान जे ड्रोन हंधनि समेत दिफ़ाई हंधनि खे निशानो बणायो वियो। कार्रवाइयूं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जे हिदायतुनि ते कयूं वियूं आहिनि। अमरीकी ईरान जी जवाबी कार्रवाई खिते में अमरीकी हंधनि खे निशानो बणायो वियो। ईरान पासदारनि इनकलाबीन ऐं कुवैत में अमरीकी हंधनि खे निशानो बणायो वियो आहे। ईरानी परदेही वज़ारत जो चवण आहे त वाइदा टोड़ण अमरीकी हुकूमत जी फितरत आहे। अमरीका पंहिंजे वाइदनि जी परवाह न कंदो आहे। हमला इस्लामाबाद मफ़ामती याददाश्त नामे जी भञकड़ी आहिनि। ईरान क़ौमी ख़ुदमुख़्तियारी इलाक़ाई सलामती ऐं दिफ़ा लाइ पुरज़म आहे। कुवैती फ़ौज जो चवण आहे त केतिरनि ई ड्रोन्स ऐं मिज़ाइल्स खे तबाह कयो वियो। बहरीन पारां पंहिंजी सरज़मीन ते ड्रोन हमलनि जी मज़म्मत। अमरीकी सदर पारां ईरान जो वजूद ख़तम करण जी धमकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चवण आहे त जंगबंदी मुआदे जी भञकड़ी ते अमरीकी फ़ौज ईरान खे निशानो बणायो। ईरानी मिज़ाइल ड्रोन स्टोरेज ऐं रेडार साइट्स ते हमला कया विया। अहिड़ो वक़्तु अची सघे थो जो असीं वधीक सब्र न करे सघूं। पोइ असांखे कमु पूरो करण लाइ फ़ौजी तरीक़ो अख़्तियार करणो पवंदो। जेकॾहिं ईअं थियो त इस्लामी जमहूरी ऐं ईरान जो वजूद ख़तम थी वेंदो।
1: दहशतगर्द हुआ, असां त हिननि खे चवंदा त बाबा तव्हां पंहिंजे हुन जेको बि तव्हांजो हो हुननि जी पॉलिसीज़ जे करे हाणे जे उहा ॻाल्हि निकिरी त हुनखे ओन छो था कयो। तव्हां त हुन खां परे थियो न त बाबा असां इन करे ई छॾियोसीं त उहो मुल्क दुश्मन हुयो, सिंध खे हिसनि में विरहण चाहे पियो, जिनापुर जो ख़्वाबु ॾिसे पियो ऐं दहशतगर्द हुयो। हुननि माण्हुनि खे हिते गोरी बंद लाशूं ॾिनियूं, पता कल्चर ॾिनो, रोज जलाओ घेराओ ऐं इहे जेके पाहियूं ॾिनी वेंदियूं। कराची तरक़ी छो न कयो? इन करे जो हिननि जा वरी जेके नुमाइंदा हुया गवर्नमेंट में हुजनि या इदारनि में हुजनि, बलदियाती इदारनि में हुजनि, हुननि गैर कानूनी तौर ते अलाटमेंटूं कयूं। हज़ारनि दहशतगर्दनि खे छह छह हज़ार माण्हू हुननि हिकड़े हिकड़े ॾींहं में रखिया। कराचीअ जी तबाही जो असल सबबु त हे आहिनि।
0: एमक्यूएम पाकिस्तान वारा बोरी बंद लाश ॾींदड़ मुल्क दुश्मन ऐं सिंध टोड़ण जी ख़्वाहिशमंद मुतहदा जे बानीअ खे छॾे चुका आहिनि त हुनजी पॉलिसी छो था अख़्तियार कनि? सूबाई वज़ीर नासिर शाह जी कराचीअ में मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल। नासिर शाह चयो त कराची जी असुल तबाही जो सबबु एमक्यूएम आहे। हुननि जो कमु कूड़ जी बुनियाद ते माण्हुनि खे भड़काइण आहे। हुननि बोरी बंद लाश ॾिना ऐं भताखोरी सिस्टम ॾिनो। बजट सेशन पूरो थियण खां पोइ बलदियाती कानून में तरमीम पेश कई वेंदी। गुज़िरियल ॾींहुं रेंजर्स ऐं पुलिस भारती प्रॉक्सीज़ जे दहशतगर्दनि खे जहनम भेड़ो कयो। वफ़ाक फंड न पियो ॾे, सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट

0: जी बात जब जहाज अगवान सगी सिंध समारोह में अगवान जो चौंड हो वातल वापस
1: अभी सुनना शहर अपना घर मठियारी।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो, उदंदा।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो, उदंदा रहो।

0: मोरे पिया पीर से जुम्मा रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो, उधर ना रहो।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GFM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो, उधरदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: DA FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GA FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो, उधर ना रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GAFM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

जान होती है, मगर ये जान लेने में हमें एक उम्र लगती है। कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है। ये दुनिया जीत जाती है, मोहब्बत हार जाती है।

0: देखिए ड्रामा सीरियल मोहब्बत और महंगाई रोजाना रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: देखिए रासे उल्फत 7 अप्रैल से मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो उतरदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GA FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

देखिए रंग महल रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: रक्त से बिस्मिल जल्द आ रहा है।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर उधर
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: देखिए पागलखाना पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल शिकार 4 नवंबर से हफ्ता और इतवार रात 7 बजे
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो बुदंदा रहो।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
4: Yeah!

0: देखिए सियानी रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल स्टैंड अप गर्ल 21 दिसंबर से जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे।
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: देखिए तेरे बिन 28 दिसंबर से बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: स्क्रीनू
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज। बुधंदा रहो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
3: जीए एफएम नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: देखिए यारे मन जुम्मा से इतवार रात 7 बजे सिर्फ स्क्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: खिलाफ शर्त अना था वो ख्वाब में भी मिले, मैं नींद नींद को तरसा मगर नहीं सोया। खिलाफ मौसम दिल है कि थम गई बारिश, खिलाफ हुरमत गम है कि मैं नहीं रोया।

अमेरिकी सदर पारां ईरान जो वजूद खत्म करण जी धमकी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चवण आहे त जंगबंदी वाइदे जी भनेकड़ी ते अमेरिकी फौज ईरान खे निशानो बणायो। ईरानी मिज़ाइल, ड्रोन स्टोरेज ऐं रेडार साइट्स ते हमला कया विया आहिनि। अहिड़ो वक़्तु अची सघे थो जो असीं वधीक सब्र न करे सघूं, पोइ असांखे कम पूरो करण जे लाइ फ़ौजी तरीक़ो इख़्तियार करणो पवंदो। जेकॾहिं ईअं थियो त इस्लामी जमहूरिया ईरान जो वजूद ख़तम थी वेंदो।

अमेरिका ईरान मुफ़ाहमत बावजूद विचोभर में छिकता तेज अमेरिका पारा बे ढी से भी ईरान से हमला ईरानी सरकारी मीडिया जो चवण है हरमुजगान सूबे में एक शहर से चार मिजाइल फायर किया वह सरक शहर कशम बेट से हमलन का आवाज बुधा वह अमेरिकी सेंटकॉम जो चवण है ईरान के ड्रोन हंधन समेत दिफाई हंधन के भी निशानो बढ़ाया कार्रवाई में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायतों से कई व्यू।

अमेरिकी हमलनि खां पोइ ईरान जी जवाबी कार्रवाई खिते में अमेरिकी हंधनि खे निशानो बणायो। ईरानी पासदार इनकलाब जो चवणु आहे त बहरैन ऐं कुवैत में अमेरिकी हंधनि खे निशानो बणायो वियो आहे। ईरानी परे वज़ारत जो चवणु आहे त वाइदा टोड़णु अमेरिकी हुकूमत जी फितरत आहे। अमेरिका पंहिंजे वाइदनि जी परवाह न कंदो आहे। हमला इस्लामाबाद मुफ़ाहिमती यादाश्त नामे जी भञकड़ी आहिनि। ईरान क़ौमी ख़ुदमुख़्तियारी इलाइक़ाई सलामती ऐं दिफ़ा जे लाइ पुरज़म आहे। कुवैती फ़ौज जो चवणु आहे त केतिरनि ई ड्रोन ऐं मिज़ाइल्स खे तबाह कयो वियो। बहरैन पारां पंहिंजी सरज़मीन ते ड्रोन हमलनि जी मज़म्मत।

0: एम क्यू एम वारा सिंध मां निकिरी पंजाब में दाख़िल कनि त खेनि खेनि आज़ादीअ जी ख़बर पइजी वेंदी। सिंध असेंबली में हर ॿोली ॻाल्हाईंदड़ मेंबर मौजूदु आहे। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जो सिंध असेंबली में ख़िताब। वॾे वज़ीर एम क्यू एम खे मुख़ातिब थींदे चयो त हिन धरतीअ खे समझो ऐं हुनखे क़बूल कयो। शुक्र कयो तव्हां कंहिं ॿी सूबा असेंबली जा मेंबर न आहियो। पाकिस्तान जे क़याम में असां अव्हांजे सभिनी जे वॾनि जूं क़ुर्बानीूं शामिल आहिनि। हर साल जे हिन बजट में बि आवाम खे रिलीफ मुहैया करण जी कोशिश कई आहे।
1: दहशतगर्द हुआ असां त हिननि खे चवंदा त बाबा तव्हां पंहिंजे हुन जेको बि तव्हांजो हो जिन खे तव्हां छॾे आयो हुननि जी पॉलिसीज़ जे करे हाणे जे उहा ॻाल्हि निकिरी त हुनखे ओन छो था कयो। तव्हां त हुन खां परे थियो न त बाबा असां इन करे ई छॾियोसीं त मुल्क दुश्मन हुयो सिंध खे हिसनि में विरहाइण चाहे पियो जिनापुर जो ख़्वाब ॾिसे पियो ऐं दहशतगर्द हुयो हुननि माण्हुनि खे हिते गोरीबंद लाशूं ॾिनियूं पका कल्चर ॾिनो रोज जलाओ घेराओ ऐं इहे जेके पाहियूं उतरी वेंदियूं कराची तरक़ी छो न कयो। इन करे जो हिननि जा वरी जेके नुमाइंदा हुया गवर्नमेंट में हुजनि या इदारनि में हुजनि बलदियाती इदारनि में हुजनि हुननि गैर कानूनी तौर ते अलाटमेंटूं कयूं हज़ारनि दहशतगर्दनि खे छह छह हज़ार माण्हू हुननि हिकड़े हिकड़े ॾींहं में रखिया। कराचीअ जी तबाही जो असल सबबु त हे आहिनि।
0: एम क्यू एम पाकिस्तान वारा बोरीबंद लाश ॾींदड़ मुल्क दुश्मन ऐं सिंध टोड़ण जे ख़्वाहिशमंद मुतहदा बानी खे छॾे चुका आहिनि त हुनजी इख़्तियार कनि। सूबे वज़ीर नासिर शाह जी कराची में मीडिया सां ॻाल्हि ॿुधी नासिर शाह चयो त कराचीअ जी असुल तबाही जो सबबु एम क्यू एम आहे। हिननि जो कमु कूड़ जे बुनियाद ते माण्हुनि खे भड़काइण आहे। हिननि बोरीबंद लाश ॾिना ऐं भताखोरी सिस्टम ॾिनो। बजट सेशन पूरो थियण खां पोइ बलदियाती कानून में तरमीम पेश कई वेंदी। गुज़िरियल ॾींहुं रेंजर्स ऐं पुलिस भारतीय प्रॉक्सी जे दहशतगर्दनि खे जहनम भेड़ो कयो। वफ़ाक फंड न पियो ॾे। सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ते कम करे रही आहे।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज़। उदंदा रहो, उदंदा रहो।
4: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
5: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
4: जीए एफएम नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज़।
6: खिलाफ शर्त अना था वो ख्वाब में भी मिले।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: It's 6:15 PM.
3: This time check is brought to you by
4: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स एंड जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी एंड चमकदार सिर्फ बिन दिहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल हमनवा बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: देखिए ड्रामा सीरियल जेंटलमैन हफ्ता और इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।

0: देखिए ड्रामा सीरियल जेंटलमैन हफ्ता और इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: 91.6 सुनते जो आवाज बदलता रहो बदलता रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल पागलखाना 29 जनवरी से रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो, उधंदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: इस्तेमाल करण जो इल्ज़ाम बेबुनियाद है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जड़ो वो अगवान बो को भी न हो, उन भी पैं वतन वाले खाने में कराची सिंध लिखो हो।

0: वफ़ाक खे ॾिनल पैसा बचाए रखिया हुआ। आईन जे आर्टिकल 104 तहत वफ़ाक खे दिफ़ा जे लाइ 260 अरब रूपया ॾिना। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त NFC मां कटौतीअ वारी ॻाल्हि पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी रद्द कई, ॿिया सूबा राज़ी हुआ। वफ़ाक 2095 अरब रूपया ॾियण जो वाइदो कयो हो। जून में 176 अरब रूपया मिलणा आहिनि। बजट में गुल प्लाज़ा साने जे मुतासिरनि जे लाइ 8 अरब रूपया सब्सिडी रखी आहे। साने जी रिपोर्ट जल्द अवाम आॾो आणींदासीं। कराची में रंजस कैंप ते दहशतगर्द हमले में शहीद थियल टिन अहलकारनि जी जनाज़े निमाज़ अदा। जनाज़े निमाज़ में वफ़ाक़ी घर वज़ीर मोहसिन नक़वी, वॾे वज़ीर मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ऐं DG रंजस सिंध, शहीदनि जे वारसनि, सीनियर सिविल ऐं फ़ौजी इख़्तियारनि जी वॾे अंग में शिरकत। शहीदनि खे भेटा पेश। मोहसिन नक़वी चयो त जेसिताईं हिकु बि दहशतगर्द आहे, असांजा बहादुर जवान ख़ामोश न वेहंदा। गुज़िरियल राति हमले दौरान जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारिजी विया हुआ। सिंध असेंबली में दहशतगर्दनि जे हमले में शहीद थियल रेंजर्स जवाननि जे लाइ फातिहा अफ़वानी। सीनियर वज़ीर शर्जी इनाम वेमण चयो त दहशतगर्दी जे वाक़े में 5 दहशतगर्द पंहिंजे अंजाम ते पहुता। मोहम्मद अवेस चयो त असां यूनिवर्सिटी रोड ते दहशतगर्दी जे वाक़े जी सख़्त मज़म्मत कयूं था। सादिया जावेद जो चवण त रेंजर्स जे शहीदनि पाकिस्तान जी हिफ़ाज़त ख़ातिर पंहिंजूं जानियूं क़ुर्बान कयूं। मुसरत जबीन चयो त बलोचिस्तान जे इलाइक़े
1: पेश कयो आहे। पंहिंजे बयान में हुन चयो त सभिनी इदारनि सां गॾियल सहकार थो पियो वञे। सरकारी सतह ते मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो अंग तोड़े ज़ख़्मी अहलकारनि जी तादाद जी तस्दीक न कई वई आहे। होॾां सोशल मीडिया ते बंदिश पियल जमियत अहरार वाक़े जी ज़िमेवारी क़बूलींदे ॼाणायो आहे त संदनि नव कारकुन अंदरि दाख़िल थियण में कामयाब थी विया। राति देर सां छिपा तर्जुमान 2 अहलकारनि जी शहादत जी तस्दीक कई हुई। सिंध असेंबली में MQM पारां ॿीहर अलॻि सूबे जो रिंगट। घरू वज़ीर पारां गुज़िरियल साल जे भेट में फुरन स्ट्रीट क्राइम ऐं चोरीअ जे वारदातुनि में घटताई जी दावा कई आहे। काल्ह घरू वज़ीर जलाल सलंजार अमन अमान ऐं धाड़ेलनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन ते तफ़सीली अंग अखर पेश कंदे चयो त गुज़िरियल सालनि जे भेट में कराचीअ में ॾोहनि जे शरह में वाज़े घटताई आई आहे। कराचीअ में मोबाइल फुरजे वाक्यनि में 7 कारुनि जी चोरीअ में 34 ऐं स्ट्रीट क्राइम में 40% घटताई रिकॉर्ड कई वई आहे। ॾोहनि में मजमूई तौर 10% घटताई आई आहे। हुन ॿुधायो त CTD ऐं ॿियनि सिक्योरिटी इदारनि सूबे में 642 IBOs ऑपरेशन कया, जिन में 66 दहशतगर्द गिरफ़्तार कया विया। कचे वारे इलाइक़े में ऑपरेशन निजात मेहराण तहत 48 धाड़ेल मारिजी विया आहिनि, जॾहिं त सरेंडर पॉलिसीअ तहत 549 धाड़ेलनि हथियार फिटा कया आहिनि। नतीजे तौर घोटकी ऐं रावतीअ समेत मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां नोगो एरियाज़ जो ख़ात्मो थियो आहे। 1,15,000 एकड़ ज़मीन धाड़ेलनि जे कब्ज़े मां आजी कराई वई आहे। हुन चयो त शहीद पुलिस अहलकारनि जे वारसनि खे 2.5 करोड़ रूपया ऐं 2 नौकरियूं ॾिनियूं पियूं वञनि। ज़ख़्मियुनि जे इलाज जे लाइ ख़ानगी अस्पतालुनि में 20 लख रूपियनि ताईं जो ख़र्चो सिंध हुकूमत बर्दाश्त कंदी। घरू वज़ीर ऐवान खे ॿुधायो त सेफ सिटी फेज़ 1 मुकमल थी चुको आहे। हुन चयो त तालीमी इदारनि में मंशियात टेस्ट कराई वेंदी। उन लाइ सिंध प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस जे रूल्स में तरमीम करे रूल 19E तहत तालीमी इदारनि में शागिर्दनि जी ड्रग टेस्ट लाज़मी करणु संजीदगीअ सां गौर कयो पियो वञे। मकानी इदारनि वारे वज़ीर नासिर हुसैन शाह चयो त फंड्स जी खोट बावजूदि हीउ बजट अवाम दोस्त आहे। हिन साल 1,000 खां वधीक तरक़ियाती स्कीमूं मुकमल कयूं वयूं आहिनि। ईंदड़ माली साल में 2,000 खां वधीक स्कीमूं मुकमल कयूं वेंदियूं। MQM जे मेंबर ताहा अहमद चयो त नवनि सूबनि जे क़याम जी ॻाल्हि आईन में मौजूदु आहे, उन खे गदारीअ सां न भेटियो वञे। नगर पार्कर भरिसां अणॼातल शिकारी नायाब नस्ल जा 3 ज़िंदा हरण पकड़े फरार थी विया। ॻोठाणनि पारां कार्रवाई जो मुतालबो। उन ॾस में ॻोठ बहराऊ जे झंग वारे इलाइक़े में नामालूम शिकारियुनि पारां मुबैना तौर नायाब नस्ल जा 3 ज़िंदा हरण पकड़े फरार थी विया। मकामी रहवासियुनि सरदार सिंह मूजिब राति देर सां अणॼातल शिकारी सर्च लाइटुनि जी मदद सां इलाइक़े में दाख़िल थिया ऐं हरण पकड़े खणी विया। इतलाउ मिलण बाद ॻोठाणनि मुख़्तलिफ़ रस्तनि ते नाकाबंदी करे शिकारियुनि खे रोकण जी कोशिश कई, पर मुबैना तौर हू गाॾीअ ज़रिए फरार थियण में कामयाब थी विया। वाक़िए बाबति वाइल्ड लाइफ़ खाते जे इशफाक में मृत तस्दीक कंदे चयो आहे त हरणनि जी खणी वञण बाबति इतलाउ मिलिया आहिनि। जांच शुरू कई वई आहे। हुन चयो त ज़िमेवारनि जी सुञाणप बाद कानून मूजिब कार्रवाई कई वेंदी। सांगड़ ज़िले में नई फुटी लहण शुरू थी वई। पंजहठि कॉटन फैक्ट्रियुनि ख़रीदारी शुरू करे छॾी। आबादगारनि में उन सिलसिले में सुराई छाइजी वई आहे। नकली बिज ऐं पाणीअ जी खोट सबबि फुटीअ जी पैदावार सख़्त मुतासिर थी रही आहे। उन ॾस में सिंध जे कॉटन बेल्ट जे मुख ज़िले सांगड़ में फुटीअ जी फसल लहण शुरू थी वियो आहे, जंहिं सबबि आबादगारनि में सुराई पैदा थी वई आहे। ज़रियनि खां मालूम थियो आहे त सांगड़ ज़िले में 110 कॉटन फैक्ट्रीज़ आहिनि, जिन में सभ खां वधीक तंडो अदब में 40, शहदादपुर में 26 ऐं बाक़ी सांगड़, किपरो, झोल, शिकारपुर, खडड़ो ऐं ॿियनि शहरनि में आहिनि। हिन वक़्त ज़िले जे 110 मां 65 फैक्ट्रियुनि फुटीअ जी ख़रीदारी शुरू करे छॾी आहे। नकली बिज ऐं ज़रई पाणीअ जे खोट सबबि सांगड़ ज़िले में कपह जी पैदावार ते असर पियो आहे, जॾहिं त चूहड़ जमालीअ जी फुटीअ जे हिक वण मां 14.5 किलो कपह निकिरे थी। पंजाब जे अघु 1000 रुपया वधीक आहे। ॿिए तरफ़ आबादगारनि वरी फैक्ट्री मालिकनि ते फुटीअ जो अघु 1000 रुपया फी मण घटाइण जो इल्ज़ाम हयो आहे। उन ॾस में आबादगारनि दायो आहे त कॉटन फैक्ट्री मालिकनि पंहिंजे मर्ज़ी जा अघु मुक़रर करे छॾिया आहिनि। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में फुटी 9,300 खां 9,500 रुपया मण ख़रीद थिए पई। सांगड़ ज़िले में कॉटन फैक्ट्री मालिकनि पंहिंजी हिकु हठी क़ाइम कंदे फी मण ते 1,000 रुपया घटि करे छॾियो आहे। हिननि सहमिया खां मसलो हल करण जी घुर कई आहे।

0: पेशा है स्पेशल रिपोर्ट। रोज़ानो आदतुनि में नंढियूं तब्दीलियूं बि सिहत ते मुस्बत या मनफ़ी असर विझी सघनि थियूं। माहिरनि मूजिब जेकॾहिं सुबुह जो नेरानो थधो पाणी पीजे त उन जा जिस्म ते कुझु दिलचस्प असर ज़ाहिर थी सघनि था। पाणी थधो हुजे या आम गर्मी पद वारो, ॿिन्ही सूरतुनि में उहो जिस्म खे पाणी जी खोट खां बचाइण में मदद ॾिए थो। पर सुबुह सवेर थधो पाणी पीअण जा कुझु अलॻि फ़ाइदा बि साम्हूं आया आहिनि। जिस्म में पाणी जी सतह बहितर थिए थी। राति जी डिघी निंड खां पोइ जिस्म में पाणीअ जे मामूली खोट थी सघे थी, जंहिं सबब थकावट, कमज़ोरी, ध्यानु ॾियण में ॾुखियाई ऐं मथे जे सूर जहिड़ा मसला पैदा थी सघनि था। सुबुह जो पाणी पीअण सां जिस्म खे ताज़गी महसूस थिए थी ऐं पाणीअ जी सतह बहितर थिए थी। हाज़मे जो निज़ाम बहितर थिए थो। ॾींहं जी शुरूआति पाणीअ सां करणु हाज़मे वारे निज़ाम खे सरगर्म करण में मददगार साबित थी सघे थी। पाणी खुराक जे नालीअ में मौजूदु फुज़िले ऐं खाधे खे अॻिते वधाइण में मदद ॾिए थो, जंहिं सां हाज़मे जा अमल वधीक मौसर थियनि था। उन सां गॾु आंडरनि जी कारकरदगी बि बहितर थिए थी ऐं कब्ज़ खां बचण में बि मदद मिले थी। तवानाई ऐं ज़हनी कारकरदगीअ में वाध। जिस्म में पाणीअ जी खोट सबब थकावट महसूस थी सघे थी। जॾहिं त सुबुह जो पाणी पीअण सां जिस्मानी तवानाई, यादगिरी ऐं ध्यानु ॾियण जी सलाहियत बहितर थियण में मदद मिली सघे थी। थधो पाणी दिमाग़ ॾांहुं रत जे वहुकरे खे बि वधाए सघे थो, जंहिं सां ज़हनी चुस्ती ऐं होशियारीअ में इज़ाफ़ो थी सघे थो। मेटाबोलिज़म में मामूली तेज़ी। कुझु तहक़ीक़ी रिपोर्ट मूजिब नेरानी थधो पाणी पीअण सां मेटाबोलिज़म जी रफ़्तार में मामूली इज़ाफ़ो थी सघे थो। जिस्म खे पंहिंजे अंदरूनी गर्मी पद खे बरक़रार रखण जे लाइ थोरी वधीक तवानाई ख़र्च करणी पवे थी, जंहिं सां कैलोरीज साइण जो अमल कुझु तेज़ थी सघे थो। मुनासिब मक़दार में पाणी पीअणु जिस्मानी वज़न खे कंट्रोल में रखण में बि मददगार साबित थिए थो। माहिरनि जी सलाह। रिपोर्टुनि मूजिब पाणी घटि पीअण सां कब्ज़, थकावट ऐं ज़हनी कारकरदगी में घटाई जा ख़तरा वधी सघनि था। बहरहाल, हर माण्हूअ जी जिस्मानी ज़रूरत मुख़्तलिफ़ हूंदी आहे, तंहिं करे सिहत बाबति कंहिं बि ख़ासि आदत इख़्तियार करण खां अॻु पंहिंजे डॉक्टर सां सलाह करणु मुनासिब आहे। हुयो हिन वक़्त ताईं जो सिंध राउंडअप। ॿिए आचर जे सिंध राउंडअप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAF।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज। बुधंदा रहो।
4: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
5: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
4: GAFM नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: खुदा की नौबत ना हो तो फिर कुछ नॉर्मल नहीं होता, और यही बात इसको समझ में नहीं आ रही।
1: मेरी बच्चियों की खुशियों को नजर ना लगे किसी की, बहुत दुख देखे उन्होंने दो सालों में।
2: हो गई बर्बाद में, लग गई मेरी खुशियों को आग।

0: के भाई को मारा है तुमने, अब उस लड़की की खातिर हमें मार दो, मार दो हमें।
1: तुम नहीं जानती कि वो तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है। सारे को तो हम खो चुके हैं, तुम्हें नहीं खोना चाहते।
2: इस लड़की को ढूंढने में उसका सुकून है, जो लड़की उसको नहीं मिलेगी खुद ही सुकून आ जाएगा उसे।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो, उधंदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: DA FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: सीरियल ग्रे 4 दिसंबर से पीर और मंगल रात 9 बजे
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
2: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुदंदा रहो बुदंदा रहो।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी
4: yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GAFM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: मोहब्बत का नशा भी ना बहुत अजीब होता है। इंसान इतना मदहोश हो जाता है कि उसे अपने महबूब के सिवा कुछ सुझा ही नहीं देता।

0: ये भी तो जुल्म ही हुआ ना कि इंसान के दिल में कोई और बसता हो और तो किसी और को उम्मीद दिलाता।
1: मैंने हमेशा आपके लफ्जों पे इत्मीनान किया, कभी भी आपके दिल में झांक कर नहीं देखा कि मोहब्बत के जिस इजहार में आपने मुझे बांधा था वो तो कब

0: पर्दा पर्दा, जब से रिश्ता जोड़ा है इसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना के रखती है।
1: बस कर दो दुर्दाना, बस कर दो प्लीज।
2: खाओ मेरी कसम, तुम उसके बारे में नहीं सोचोगे।

0: तुम्हें बर्बाद कर देगी।
1: अगर मुझे ना मिली तो बर्बाद हो जाऊंगा।
2: उस बेचारी का कसूर यह है कि वो शैतानों की बस्ती में अपने लिए इंसान तलाश कर रही थी।
3: बच्ची की रूह को चलने की है, उसके पाकीजा किरदार पर खींचड़ उछाली है तुम लोगों ने। अल्लाह ताला तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा, देखना।
0: मैं ना पैरों के सामने तमाशा बन गई मामा।
3: अच्छा।

0: से तुम्हारे लहजे की नफरत मेरी जान ले लेगी।
1: और आपकी बेवफाई मेरी जान ले चुकी है।
0: आज के बाद इस घर की तरफ नजर उठा के मत देखना। गेट आउट। एक बार कहती थी कि तुम्हें इस घर से नहीं जाना।
1: जब कोई मोहब्बत करने वाला जिंदगी से जाने का हुक्म देते तो हुक्म मान लेना चाहिए।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GAFM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

स्पेशल नेरानी पानी पीण पेश करण जो लिख सर्विस कमीशन ऑफ दरख्वास्तुन ते बुधणी कंदे दरख्वास्त गुजारन जो इम्तिहानी कापियूं पेपर सील करे पेश करण जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। अदालत सेशन जे हैदराबाद खे हिदायत कई आहे त लाॻापियल रिकॉर्ड हासिल करे अदालत में पेश कयो वञे। उन सिलसिले में अदालत लिखत में हुकुमनामो पिण जारी करे छॾियो। हुकुमनामे मूजिब दरख़्वास्त गुज़ारन मौक़ुफ़ इख़्तियार कयो आहे त खेनि कमज़ोर ऐं गैर मक़बूल बुनियादनि ते नाकाम करार ॾिनो वियो आहे, जॾहिं त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो चवणु आहे त उमेदवारनि खे मुकमल मेरिट जे बुनियाद ते नाकाम करार ॾिनो वियो आहे। नतीजनि में कंहिं बि क़िस्म जी बदनीयतीअ जो अंसर शामिल न आहे। ॿुधणीअ दौरान अदालत वधीक ॿिनि उमेदवारनि जी धुर बणजण वारी दरख़्वास्त बि मंज़ूर करे वरिती। अदालत सेशन जज हैदराबाद खे हिदायत कई आहे त हू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन खां दरख़्वास्त गुज़ारन जूं जवाबी कापियूं हासिल करे समूरो रिकॉर्ड सील करे ईंदड़ ॿुधणीअ ते पंहिंजे नुमाइंदे वसीले अदालत में पेश करे हुकमनामे मूजिब समूरो रिकॉर्ड अदालत तरफ़ां मुक़ररु कयल मजिस्ट्रेट जे मौजूदगीअ में डीसेल कयो वेंदो। कराची जे इलाइक़े मौसमियात वेझो रेंजर्स आफिस ॿाहिरां दहशतगर्दनि जो हमिलो नाकाम, केतिरा ई दहशतगर्द मारिजी विया। पुलिस ज़रियनि मूजिब दहशतगर्दनि रेंजर्स जे ट्रांसपोर्ट आफिस जे गेट ते दस्ती बम उछलायो ऐं गाॾी अंदरि दाख़िल करण जी कोशिश कई। मौके ते मौजूद अहलकारनि दहशतगर्दनि सां मुक़ाबलो करे हमले खे नाकाम बणाए छॾियो। फायरिंग जी ॾे वठि में हमिलो कंदड़ समूरा दहशतगर्द मारिजी विया आहिनि। ज़रियनि मूजिब दहशतगर्दनि सां फायरिंग जी ॾे वठि में रेंजर्स जा 5 अहलकार ज़ख़्मी थिया आहिनि, जंहिं मां 3 जी हालत गणती जोगी ॿुधाई पई वञे। वाकिए जे इतलाह खां पोइ रेंजर्स पुलिस ऐं कानून लागू कंदड़ इदारनि जा अटाला वाकिए वारे हंधि पहुची विया। इलाइक़े खे सील कयो वियो। SSP ओभर ज़ुबैर नज़ीर शेख, DIG ओभर एडिशनल IG कराची, IG सिंध ऐं CTD जा आफिसर बि वाकिए वारे हंधि पहुता ऐं सूरत हाल जो जाइज़ो वरितो। आख़िरी इतलाहनि ताईं क्लीयरेंस ऑपरेशन जारी हो। मारिजी वियल दहशतगर्दनि जी सुञाणप ऐं संदन रूट जो जाइज़ो वरितो पियो वञे। सरकारी सतह ते मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो अंग तोड़े ज़ख़्मी अहलकारनि जी तादाद जी तस्दीक न कई वई आहे। होॾां सोशल मीडिया ते बंदिश पियल जमियत अहरार वाकिए जी ज़िमेवारी क़बूलींदे ॼाणायो आहे त संदन नव कारकुन अंदरि दाख़िल थियण में कामयाब थी विया। राति देर सां छिपा तर्जुमान 2 अहलकारनि जी शहादत जी तस्दीक कई हुई। सिंध असेंबलीअ में MQM पारां ॿीहर अलॻि सूबे जो रिंगट, घरू वज़ीर पारां गुज़िरियल साल जे भेट में फुरन, स्ट्रीट क्राइम ऐं चोरीअ जे वारदातुनि में घटिताई जी दावा कई आहे। काल्ह घरू वज़ीर जलाल सलंजार अमन अमान ऐं धाड़ेलनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन ते तफ़सीली अंग अखर पेश कंदे चयो त गुज़िरियल सालनि जे भेट में कराचीअ में ॾोहनि जे शरह में वाज़े घटिताई आई आहे। कराचीअ में मोबाइल फुरजे वाकियनि में 7 कारुनि जी चोरीअ में 34 ऐं स्ट्रीट क्राइम में 40% घटिताई रिकॉर्ड कई वई आहे। ॾोहनि में मजमूई तौर 10% घटिताई आई आहे। हुन ॿुधायो त CTD ऐं ॿियनि सिक्योरिटी इदारनि सूबे में 642 IBOs ऑपरेशन कया, जिन में 66 दहशतगर्द गिरफ़्तार कया विया। कचे वारे इलाइक़े में ऑपरेशन निजात मेहराण तहत 48 धाड़ेल मारिजी विया आहिनि, जॾहिं

सरेंडर पॉलिसीअ तहत 539 धाड़ेलन हथियार फिटा कया आहिनि। नतीजे तौर घोटकी ऐं रावतीअ समेत मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां नोगो एरियाज़ जो ख़ात्मो थियो आहे। 115,000 एकड़ ज़मीन धाड़ेलनि जे कब्ज़े मां आजी कराई वई आहे। हुन चयो त शहीद पुलिस अहलकारनि जे वारसनि खे 2.5 करोड़ रुपया ऐं 2 नौकरियूं ॾिनियूं पियूं वञनि। ज़ख़्मियुनि जे इलाज जे लाइ ख़ानगी अस्पतालुनि में 20 लख रुपियनि ताईं जो ख़र्चो सिंध हुकूमत बर्दाश्त कंदी। घरू वज़ीर ऐवान खे ॿुधायो त सेफ सिटी फेज़ 1 मुकमल थी चुको आहे। हुन चयो त तालीमी इदारनि में मंशियात टेस्ट कराई वेंदी। उन लाइ सिंध प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस जे रूल्स में तरमीम करे रूल 19E तहत तालीमी इदारनि में शागिर्दनि जी ड्रग टेस्ट लाज़मी करणु संजीदगीअ सां गौर कयो पियो वञे। मकानी इदारनि वारे वज़ीर नासिर हुसैन शाह चयो त फंड्स जी खोट बावजूदि हीउ बजट अवाम दोस्त आहे। हिन साल 1000 खां वधीक तरक़ियाती स्कीमूं मुकमल कयूं वियूं आहिनि। ईंदड़ माली साल में 2000 खां वधीक स्कीमूं मुकमल कयूं वेंदियूं। MQM जे मेंबर ताहा अहमद चयो त नवनि सूबनि जे क़याम जी ॻाल्हि आइन में मौजूदु आहे, उन खे गदारीअ सां न भेटियो वञे। नगर पार्कर भरिसां अणॼातल शिकारी नायाब नस्ल जा 3 ज़िंदा हरण पकड़े फरार थी विया। ॻोठणनि पारां कार्रवाई जो मुतालबो। उन ॾस में ॻोठ बहराऊ जे झंग वारे इलाइक़े में नामालूम शिकारियुनि पारां मुबैना तौर नायाब नस्ल जा 3 ज़िंदा हरण पकड़े फरार थी विया। मकामी रहवासियुनि सरदार सिंह मूजिब राति देरि सां अणॼातल शिकारी सर्च लाइटुनि जी मदद सां इलाइक़े में दाख़िल थिया ऐं हरण पकड़े खणी विया। इतलाउ मिलण बाद ॻोठणनि मुख़्तलिफ़ रस्तनि ते नाकाबंदी करे शिकारियुनि खे रोकण जी कोशिश कई, पर मुबैना तौर हू गाॾीअ ज़रिए फरार थियण में कामयाब थी विया। वाक़िए बाबति वाइल्ड लाइफ खाते जे इशफाक में मृत तस्दीक कंदे चयो आहे त हरणनि जी खणी वञण बाबति इतलाउ मिलिया आहिनि। जांच शुरू कई वई आहे। हुन चयो त ज़िमेवारनि जी सुञाणप बाद कानून मूजिब कार्रवाई कई वेंदी। सांगड़ ज़िले में नई फुटी लहण शुरू थी वई। 65 कॉटन फैक्ट्रियुनि ख़रीदारी शुरू करे छॾी। आबादगारनि में उन सिलसिले में सुराई छाइजी वई आहे। नकली बिज ऐं पाणीअ जी खोट सबब फुटीअ जी पैदावार सख़्त मुतासिर थी रही आहे। उन ॾसमें सिंध जे कॉटन बेल्ट जे मुख ज़िले सांगड़ में फुटीअ जी फसल लहण शुरू थी वियो आहे, जंहिं सबब आबादगारनि में सुराई पैदा थी वई आहे। ज़रियनि खां मालूम थियो आहे त सांगड़ ज़िले में 110 कॉटन फैक्ट्रीज़ आहिनि, जिन में सभ खां वधीक टंडो अदब में 40, शहदादपुर में 26 ऐं बाक़ी सांगड़, किपरो, झोल, शिकारपुर, खडड़ो ऐं ॿियनि शहरनि में आहिनि। हिन वक़्तु ज़िले जे 110 मां 65 फैक्ट्रियुनि फुटीअ जी ख़रीदारी शुरू करे छॾी आहे। नकली बिज ऐं ज़रई पाणीअ जे खोड़ सबबि सांगड़ ज़िले में कपह जी पैदावार ते असर पियो आहे, जॾहिं त चूहड़ जमालीअ जी फुटीअ जे हिकु वण मां 14.5 किलो कपह निकिरे थी। पंजाब जे अघु 1000 रुपया वधीक आहे। ॿिए तरफ़ आबादगारनि वरी फैक्ट्री मालिकनि ते फुटीअ जो अघु 1000 रुपया फी मण घटाइण जो इल्ज़ाम हयो आहे। उन ॾस में आबादगारनि दायो आहे त कॉटन फैक्ट्री मालिकनि पंहिंजे मर्ज़ीअ जा अघु मुक़रर करे छॾिया आहिनि। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में फुटी 9,300 खां 9,500 रुपया मण ख़रीद थिए पई। सांगड़ ज़िले में कॉटन फैक्ट्री मालिकनि पंहिंजी हिकु हठी क़ाइम कंदे फी मण ते 1000 रुपया घटि करे छॾियो आहे। हिननि सहमिया मसलो हल करण जी घुर कई आहे।

पेशा है स्पेशल रिपोर्ट। रोज़ानो आदतुन में नंढियूं तब्दीलियूं भी सेहत ते मुस्बत या मनफी असर विझी सघनि थियूं। माहिरनि मूजिब जेकॾहिं सुबुह जो नेराणो थधो पाणी पीजे त उन जा जिस्म ते कुझु दिलचस्प असर ज़ाहिर थी सघनि था। पाणी थधो हुजे या आम गर्मी पद वारो, ॿिन्ही सूरतुनि में उहो जिस्म खे पाणी जी खोट खां बचाइण में मदद ॾिए थो। पर सुबुह सवेर थधो पाणी पीअण जा कुझु अलॻि। जिस्म में पाणी जी सतह बहितर थिए थी। रात जी डिघी निंड खां पोइ जिस्म में पाणीअ जे मामले सां कमज़ोरी मथे सघनि थो जो पाणी महसूस थिए थी। हाज़मे जो निज़ाम बहितर थिए थो। ॾींहं जी शुरूआत पाणीअ सां करणु हाज़मे वारे निज़ाम खे सरगर्म करण में मददगार साबित थी सघे थी। पाणी खुराक जे नालीअ में मौजूदु फुज़िले ऐं खाधे खे अॻिते वधाइण में मदद ॾिए थो, जंहिं सां हाज़मे जा अमल वधीक मौसर थियनि था। उन सां गॾु आंडरनि जी कारकरदगी बि बहितर थिए थी ऐं कब्ज़ खां बचण में बि मदद मिले थी। तवानाई ऐं ज़हनी कारकरदगीअ में वाधि। जिस्म में पाणीअ जी खोड़ सबबि थकावट महसूस थी सघे थी। जॾहिं त सुबुह जो पाणी पीअण सां जिस्मानी तवानाई, यादगिरी ऐं ध्यानु ॾियण जी सलाहियत बहितर थियण में मदद मिली सघे थी। थधो पाणी दिमाग़ ॾांहुं रत जे वहुकरे खे बि वधाए सघे थो, जंहिं सां ज़हनी चुस्ती ऐं होशियारीअ में इज़ाफ़ो थी सघे थो।

0: मेटाबॉलिज्म में मामूली तेजी। कुछ तहकीकी रिपोर्ट मूजिब निरानी थदो पानी पीण सां मेटाबॉलिज्म जी रफ्तार में मामूली इजाफो थी सके थो। जिस्म के पांजे अंदरूनी गर्मी पद के बरकरार रखण जे लाए थोड़ी वधिक तवानाई खर्च करनी पवे थी, जैसा कैलोरीज साइण जो अमल कुछ तेज थी सके थो। मुनासिब मिकदार में पानी पीण जिस्मानी वजन के कंट्रोल में रखण में भी मददगार साबित थे थो। माहिरन जी सलाह। रिपोर्टन मूजिब पानी घट पीण सां कब्ज, थकावट ऐं ज़हनी कारकर्दगी में घटताई जा खतरा वधी सघनि था। बहरहाल हर माण्हूअ जी जिस्मानी ज़रूरत मुख़्तलिफ़ हूंदी आहे, तंहिं करे सिहत बाबति कंहिं बि ख़ासि आदत इख़्तियार करण खां अॻु पंहिंजे डॉक्टर सां सलाह करणु मुनासिबु आहे। ही हुयो हिन वक़्त जो सिंध राउंडअप। ॿिए आचर जे सिंध राउंडअप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।